नया मेरी बाल दिएगा, जुबा मेरी दूल दिएगा, नुपुर रोता ले तुम आया मैं बेचे जाने।

नमो भगवते वासुदेवाय अथो श्रीमद् भगवद गीता दशम अध्याय विभूति योग के एक्सलेशन श्लोक के पाठ कर श्री भगवान वाचो यद विभूतिमत्